नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री सीताराम। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एडलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पाएंगे www.5bvi.com.au पर। श्रोताओं, तारीख है 8 जुलाई 2026 और समय हो रहा है 7:30 PM। बार है बुधवार। आज के कार्यक्रम में हम आपको पेश कर रहे हैं सदाबहार गीतों की ये श्रृंखला।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 एफएम भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5ebi.com.au पर।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे आकाशवाणी एडलेट पर 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे थे www.5bbi.com.au पर, और इस कार्यक्रम को आगे भी आप ट्यून कर पाएंगे ऑनलाइन। अभी समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए विनोद बिस को, नमस्कार, शब्बा खैर।